कहीं ज्यादा कहीं कम, कहीं ज्यादा कहीं कम, अर्ररम तर्ररम दुनिया के कैसे कैसे गम, कहीं ज्यादा कहीं कम।

तेरी मंजिल की वो तेरी मंजिल की तस्वीर बन जाऊंगी। मंजिल का साथ है, मिलने की याद है, तू क्यों उदास है।

प्यारी प्यारी अगन मीठी मीठी चुभन प्यारी प्यारी तड़पती हूँ मैं आरज़ूए छुपाए तड़पती हूँ मैं आरज़ूए छुपाए।

0: थर थर आनंद बाद झांझ और मृदंग
1: मोर नाच कोयल ने बीना बजाई है, आज राम जन्म की बधाई है, बधाई है,
0: बधाई है।

0: राम के मन में सीता का ध्यान,
1: प्राणों की आरती जलाई है जलाई है।
2: आज राम जन्म की बधाई है बधाई है। आज राम जन्म की बधाई है बधाई है।